खुशी का दिन है आया निकला मूर्त चंगा भाई सूट पहन के बन गया दूल्हा सूट पहन के बन गया दूल्हा कल तक था जो

0: As you say, sunshine.
1: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन words?
0: जहाँ से मैं आया हूँ.
1: ओ, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
0: प्यार.
1: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई।

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है, एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझे।

प्रिय बंधुओं, इस कैसेट टेप द्वारा हम दिवाली के अवसर पर होने वाला श्री लक्ष्मी पूजन संपूर्ण विधि विधान द्वारा करने जा रहे हैं। आइए आप भी अपने परिवार कुटुंब समेत इस लक्ष्मी पूजन में सम्मिलित हो जाइए। इस कैसेट टेप के दोनों ओर प्रोग्राम में जो कुछ शामिल है इस प्रकार है, पूजन में काम आने वाली सामग्री और पूजन का विधि विधान, संकल्प, कलश स्थापना, गणपति पूजन, नवग्रह पूजन, खोड़श मात्री तथा लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा और अंत में श्री लक्ष्मी जी की आरती का गायन किया गया है। सबसे पहले आप पूजन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करें। दो बड़े थाल, एक मिट्टी का घड़ा या बड़ी पीतल की अथवा तांबे की गड़बी, एक दरमियानी गड़बी, दोनों को या मिट्टी के घड़े को एक बार धो के शुद्ध जल से भर लेने। एक थाल में रोला, चावल, फूल, मौली, केसर, पान पत्ते, मिश्री, मिठाई, लौंग, इलायची, धूप दीप आदि रखें। दूसरे थाल के मध्य में गणेश बनावे, बाईं ओर ओंकार, दाहिनी ओर श्री तथा ऊपर की ओर नवग्रह के लिए 9 बिंदु तिलक तथा नीचे की ओर खोर्श मात्री के लिए 16 बिंदु तिलक पंक्तिबद्ध लगावें। हरे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट रखें। एक छोटी टोकरी फलों की तथा ऋतु अनुसार फूल और फूल माला तथा मिठाई का डिब्बा भी पास रखें। यदि आप पूजन अपने कारोबार, व्यापार, दुकान या दफ्तर के लिए कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपनी डे बुक, कैश बुक, लेजर तथा कलमदान और गल्ला या सेफ आदि भी साफ सुथरा करके पूजा के योग्य बना लें। अब सारा परिवार नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर घर के एक कोने में जहां पूजन करना हो बिछाई करके बैठ जाए। एक सिंहासन बनाकर उस पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा तस्वीर जो भी मिल सके विराजमान करें। पूजन के समय चांदी का एक रुपया नवग्रह वाले थाल में रखें, क्योंकि रुपया और पैसा ही लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, तथा कुछ रुपए और खुले हुए पैसे भी अपने पास रखें। बाजार से लाई गई हटड़ी में फुल्लियां, अखरोट, मिठाई आदि भरकर सामने रखें। हाथ में चावल लेकर देवी देवताओं का ध्यान कर उनके सम्मान सत्कार में श्रद्धायुक्त ध्यान लगावें तथा हो सके तो बोलें, ओम श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, पृथ्वीये नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। अपने हाथ के चावल पूजा मंडप के ऊपर छिड़क देवें। अब शुद्ध जल दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर उसका आचमन करें और आचमन पानी के तीन हिस्से बनाकर करना चाहिए। ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। अब शुद्ध जल से हाथ को धो ले में, फिर संकल्प के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर चावल, फूल पत्तियां, जल और दक्षिणा के पैसे लेकर बायां हाथ सीधा दाएं हाथ की हथेली पर रखें और संकल्प करें। ओ
विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु हरिओं तत्सद्य श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त एक देशांतर्गते अमुक देशे भारत देशे अमुक पुण्य क्षेत्रे पंजाब क्षेत्रे अमुक ग्रामे अपने नगर का नाम लीजिए। बौधा अवतारे अमुक संवत्सरे 2044 संवत्सरे अमुक मासे कार्तिक मासे शुभ तिथौ चतुर्दशम्याम अमुक वासरे गुरुवासरे अमुक गोत्र प्रवर विशिष्टो अमुक नामाहम। अब अपने अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कीजिए। मम कायक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहार्यर्थे स्थिर लक्ष्मी प्रीत्यर्थे श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे सर्वार निवृत्ति पूर्वक सर्वाभीष्ट फल प्राप्त्यर्थे व्यापारे लाभ्यर्थे गणपति नवग्रह कलशादि पूजन पूर्वकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती लेखनी कुबेरादि नाम च पूजनम कृष्ये। अब अपने हाथ की सामग्री भूमि पर छोड़ दें। अब आप अपना सारा ध्यान नवग्रह पूजन के लिए बनाए गए थाल के ऊपर लगा में। थाल के बीच में स्वस्ति चिन्ह बनाया गया है, उसके ठीक बीच में थोड़े से चावल और फूल पत्तियां बिछा कर एक काठी सुपारी के ऊपर मौली लपेट कर उसको गणेश जी का प्रतीक बनाकर गणेश जी स्थापित करें तथा अब सब लोग अपने बाएं हाथ की हथेली पर चावल ले में कुछ फूल मिलाकर और दाहिने हाथ से ढक कर अपनी आंखें बंद करके ध्यान मगन होकर स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करें। ओम श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्श्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षेयो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोर्धा

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ? ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ। ਨਕਲ ਨਤੀਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74-735-043.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Meet Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rosho, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio, with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.
3: Hey yo, it's Intenso and we're back again alongside the Mona. What we tell them?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

सतकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूं शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूं ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहे और खुशियाँ समेटते रहे। आमीन।

0: नफ्सेन ज़ायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Sheffield Mellor CIC in association with Eventmaster International presents DesiFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Meet Sandu, Summer Blake, Sir

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

आपके मनपसंद गीत और आपकी मनपसंद आवाज़ों पे मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह इंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

छेड़ो न मुझको छेड़ो, ऐसे न मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के है राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल होगा मिलना हमारा मुश्किल होगा, मिलना हमारा मुश्किल होगा मिलना हमारा।

बाहर का मौसम जैसा भी हो लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं और आप जिस मूड में भी हैं जैसे भी हैं मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

कमर्शियल्स और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं, खुश आमदीद, वेलकम और जी आई एन कहते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस घंटे में भी और अगले घंटे में भी आप हमारा साथ ज़रूर निभाएंगे जैसे कि निभाते आए हैं। आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत होते हैं और आप हमारे प्रोग्राम की रौनक होते हैं। जब आप आते हैं तो ये महफिल और भी पुर रौनक हो जाती है और हमारा सफ़र खूबसूरत और हसीन बन जाता है। आपका शुक्रिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call

आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं डीबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर और इर्द गिर्द के इलाकों में, और 100.6 एफएम पे आप हमें सुनते हैं काल्डर डेल में। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं सनराइज रेडियो को सुनने के, आप के जरिए भी हमें सुन पाते हैं और नेट पे भी, गूगल के जरिए भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें जहाँ चाहें आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो को 24 घंटे। और मैं हूँ शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूँ खूबसूरत गीतों के साथ। आपका शुक्रिया।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: यहाँ।
1: मुझे यकीन है कि जो गीत आपने सुना ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ आपकी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप गीत सुनते हैं तो उसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। यही नहीं कि हम गीत सुनते हैं बल्कि ये हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हमने पहली बार ये गीत सुना था, और ऐसे लगता है कि हम फिर से उसी जगह पर लौट आए हैं और वही दोस्त और वही साथी फिर से हमारे साथ बैठे हैं और इस गीत का मज़ा ले रहे हैं, और इस गीत का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। जैसे कि ये आने वाला गीत भी हम आपके लिए लेके आए हैं, यकीनन आपकी यादों को ताज़ा करेगा और आपकी दिल की धड़कनों को भी तेज करेगा।

प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हमने कदम रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जी आयान खुशामदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से, तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DesiFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from

किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

रही क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हम सफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी जिंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: Classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Okay, listeners, welcome back after the all-important classic hit of the hour. Hope you enjoyed that one. Lovely memories. Okay, so I'll be with you on the other side. Stay tuned and don't go anywhere.
1: जसी कितने गया भाई?
2: जसी सर दो यार महफल का रंग चेंज करिए।
1: जसी तो एमी पीछे बैठा मोड़े आ जा।
3: महाराज महाराज आओ जी
4: कम ऑन जस्ट गिव्स अ ट्यून भाई।
5: यार जी नहीं करता।
2: दिखा यार तुम भी कोई कलाकार ही।
3: जी ना संज्ञा कर तुम कितनी बार तुमने क्या आया? चला तुम बोले।
6: Come on guys man, I don't feel like it.
7: Bro, you can be better than this one. Give me some modern shot and gaane yaar.
6: चलो इद्दा करो थोड़ा चुप हो जाओ and some

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: The classic hit, Flashback. Flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: come back after the all-important classic hit of the hour. Hope you enjoy that one. Lovely memories. Okay, so I'll be with you on the other side. Stay tuned and don't go anywhere.
1: So मैं साड़ी दुनिया दे तमाम पंजाबियों नूं अपने वालों सत श्री अकाल कह रहा हाँ। कबूल करो इस खुशी दे मौके ते जिथे एडे जश्न मनाए जा रहे ने अज इंडी सगू वास्ते उस दी एक खूबसूरत पेशकश दे विच जो मेरा सब तो फेवरेट गीत है बाबियां दे चल चलिए।

0: भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन तिकरेरू समान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
0: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
2: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
1: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
2: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8pm for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735-043.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: Sophie Jewelers, 119-2121, Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014. Sophie Jewelers.

0: कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं
3: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।

0: सोना ही मिलिया।
1: ओहो, ते तो सब चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना है स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपरस्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं
3: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं
3: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।
4: योदे सूर में शान पंजाब दी है एनू देर पंजा दरियावां दे आप दी है मैं जांदी नी जिवें गुलाब विचों जानी अड़खने इवें पंजाब विच।